कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे। मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर कस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर कस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345 923 2860।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: allows no tension beauty cream raavadam
1: chai
2: no tension beauty cream
0: aao no tension beauty cream da batala pe so raju ki da magnad dano da guna tir sari tul khatam kli zaka chidad har kisam steroid na paak ti
2: khano bya cheez kisman nuksan nishte na bya khira la zarra ura kana
0: laalam usida la raavadam
2: rafti da fara 0334 940 9037
3: क्या आप भी चाहती हैं वो सुनहरी चमक जो सबको आपकी तरफ मुतवज्जे कर दे? तो फिर वक्त आ गया है नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम का। ये सिर्फ एक ये है जादू जो आपकी जिल्द में लाए नरमी, ताजगी और गोल्ड जैसा निखार। खालिस गोल्ड पार्टिकल्स के साथ ये जिल्द को बनाए नरम, चमकदार और पुरकशिश। चाहे दफ्तर का वक्त हो या किसी पार्टी का प्लान, नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे आपको वो कॉन्फिडेंस जो सबको हैरान कर दे। और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

बिल्कुल जिना दाऊ सर अपडेट्स मौजूद अपडेट्स बिल शामिल वसीम अकरम कम जिदा पाकिस्तान मायनास बॉलर सरसरा बेहतरीन कप्तान चुकम दे दुनिया के अकाहुमा तेर शिविर और पाकिस्तान लखवा जिनाब दटोलू ने ज्यादा विकेट का

0: मैसेज दाखिल बीबी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक, जो गुजरा हुआ ईद है आपको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है जी। एनीवे कॉल तरफ से गुरु काल को उनकी सुख दिया, उदकम जने दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो को लाओ खरीदा पूरा जब भी जम काल ने मिला, लेकिन काल बस मिला उसे खुदे देता सुलाबाद की। एनीवे जनाब मैसेज गोड़ो पार्टिसिपेशन वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैर मुबारक शे जी, कम अख्तर है? अख्तर खुद ले रहे
1: अख्तर लाड के ननो काल की तो काल नु चतावे
0: काल नु चतावे के ना
1: छे अख्तर
0: सही द तेरशे अख्तर दे तासु तो
1: मुबारक
0: छे तेरशे अख्तर दू मता उस तो डेढ़ डेढ़ मुबारक छे
1: तासु तो मने देर मुबारक छे और वखे वखे देर खड़ी
0: बस वखे खड़ ले दिखा
1: खाजा ने मुड़ कर देखे खन में दर्श
0: हां
1: ना
0: के सर शौक दे
1: शौक
0: के बेटिंग के बालिंग के
1: बेटिंग के
0: बेटिंग के
1: बेटिंग के
0: नो खे तरफ था बेटिंग के गस तरफ था
1: खे तरफ था
0: क्या ना कम खिलाड़ी कम खिलाड़ी दे फख दे
1: खिलाड़ी
0: बाबर आजम दावले दावले सही था डेरे से मन न कहूँ जितना खैसे जो के बेल हाफिज बिल्कुल जी ना डाउन सर हूँ डेरे से मन न कहूँ चकपल मीनिंग सर शरीक गड़ला अख्तर हवाले सर रिलेटेड अपडेट्स अगर सर शरीक कहूँ भाई दे डेरे से मन न कहूँ अख्तर खुश के तेर शिवे दे कमेंट्स गुरु सैयद शबीर अहमद शिराजी सलाम की सलाम वालेकुम सलाम मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ आसिफ सलाम रड़ी सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम दिन अलावा हैदर अफरीदी अभी मुदावाई चिल्वी अख्तर दे मुबारक शाह खैर मुबारक जी हैदर अफरीदे चर तक आये मड़ा पता देने लगी क्या चर तक आये भी है डेर वक्त बाद कमेंट सीधे अगर आग ले शो तो खुराजे कल ना कल मना

Next message of the show was Assalamu alaikum Mr. Wow, aapne to pehle se excuse kiya tha, aaj to yakeen nahi tha ke show hoga aaj. Oh, welcome ji and most welcome to you. Thank you so much. May Allah give you long life with the bundle of happiness. Mujhe kisi jagah jana tha lekin filhal wo kya kehte hain dilay ho gaya. नेक्स्ट मैसेज आपने शुरुआत जो रेमाद हो गया है अपने विलेज वापस. हाँ बिल्कुल, वो उसको मैंने वो क्या कहते यानी भी बिठा दिया कि आप आराम से जाइएगा और दुआ भी साथ में दिए मैंने. ओके okay?

करवाई है मगर क्या करूं, आपकी मर्जी है, जो कहना है वो कह दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम पर्सनल को खुलेआम और सरेआम लाते हैं। फिर आपने नाराज नहीं हो रहा है।

नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो वाज बीटीएस स्विम सॉन्ग प्ले करो के जी हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपने जो फरमाइश की है हम वो पूरा कर लेंगे।